0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: मेरे सारे विरोधी वक्तव्यों के बावजूद ही अगर तुम मेरे साथ हो तो ही मेरे साथ हो। इसलिए मैं तुमसे ये भी कह दूं कि मेरे इतने विरोधी वक्तव्यों के पीछे बहुत बहुत कारण हैं। उनमें एक ये भी है कि जो इनके बावजूद मेरे पास होंगे उनको ही मैं चाहूंगा कि मेरे पास हो। जो इनके कारण हट जाएंगे उनकी बड़ी कृपा, उनके पास होने का कोई मूल्य न था। भीड़ बढ़ाने से तो कोई प्रयोजन नहीं, वे समय ही खोते, अपना भी मेरा भी, वे जगह ही भरते। अच्छा हुआ हट गए। दो तरह के लोग हैं। सभी जीवन की घटनाएं दो हिस्सों में बटी होती हैं। मेरे करीब हजारों आने वाले लोगों में जब पुरुष मेरे पास आते तो कहते हैं आपके विचार हमें अच्छे लगते, इसलिए आपसे नाता बनाते। स्त्रियां जब मेरे पास आती वो कहती हैं आप हमें अच्छे लगते, इसलिए आपके विचार भी अच्छे लगते। और ऐसा स्त्री पुरुष का विभाजन बहुत साफ सुथरा नहीं है। बहुत से पुरुष हैं जो स्त्रियों जैसे हृदयवान हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं जो पुरुषों जैसी बुद्धिमान हैं। बुद्धि कहती है विचार अच्छे लगते, इससे आपसे लगाव है। हृदय कहता है आपसे लगाव है, इसलिए विचार भी अच्छे लगते। अब थोड़ा सोचो, जो विचार के कारण मुझसे लगाव बनाया है, कल अगर विचार ठीक ना लगे, और ऐसे में हजारों मौके लाता हूं जब विचार ठीक नहीं लगते। मेरे पास बहुत से गांधीवादी लोग थे, फिर मैंने उनसे छुटकारा चाहा। गांधी से कुछ लेना देना ना था, लेकिन गांधीवादियों के कारण गांधी के विपरीत बोला, वो भाग गए। जो उसमें से बच गए उन्होंने सबूत दिया कि उनका नाता मुझसे है। मेरे पास जब मैं गांधी के विपरीत बोला तो सारे मुल्क के समाजवादी, साम्यवादी, उनकी भीड़ बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट जो मुझे कभी सुनने ना आए थे वो आने लगे। फिर जब मैं समाजवाद के खिलाफ बोला वो भाग गए। उसमें से कुछ रुक गए। जो रुक गए वही मूल्यवान थे। निरंतर मैं ये करता रहा हूं, निरंतर मैं ये करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारण ही मेरे पास हो, कोई और इतर कारण नहीं। ये संबंध सीधा है तो ही तुम्हारा यहां होना उचित है, अन्यथा तुम किसी और की जगह घेर रहे हो। खाली करो, कोई और वहां होगा, कोई और लाभ ले लेगा। तुम द्वार पर भीड़ मत करो, अफसोस तुम यहां हो। इसे भूलना मत, इसे सतत स्मरण रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। इसे भी तुम समझ लो कि मैं गांधी के खिलाफ बोला, तुम गांधीवादी थे ही नहीं, इसलिए तुम्हें कोई अड़चन न हुई और तुमने सोचा कि हमारा तो प्रेम का नाता है। मैं समाजवाद के खिलाफ बोला, तुम समाजवादी कभी थे ही नहीं, तुमने कहा हमें इन विरोधी वक्तव्यों से कुछ नहीं लेना, हमारा तो प्रेम का नाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारी जड़ पकड़ ही लूंगा। तुम ज्यादा देर ना बच पाओगे, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे मत, तुम्हारे शास्त्र पर हमला करूंगा ही, करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे शास्त्र से मुक्त ना करूं, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना कर पाऊंगा। जब तक तुम तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना हो, तब तक अहंकार के नीचे का आधार ना हटेगा, तुम्हारा भवन गिर ना सकेगा। तो मैं खोजे चला जाता हूं, मेरे साथ आखिर में जो बच रहेगा, सभी झंझावातों को सहकर, सभी आंधियों को सहकर, वो परीक्षा में पूरा उतरा। अगर तुम्हें होश हो तो कोई कारण नहीं कि तुम भी परीक्षा में क्यों ना पूरे उतर जाओ। लेकिन जब तुम्हारे मत पे चोट पड़ती है तब होश खो जाता है, तब आदमी बेचैन हो जाता है। क्योंकि ये मानना कि तुम कोई गलत चीज मानते थे बड़ा मुश्किल होता है। तुम इतने बुद्धिमान और किसी गलत चीज को मानते थे? तुम्हें अपनी बुद्धिमानी पर शक नहीं आता, और धार्मिक व्यक्ति का वो बुनियादी लक्षण है, जिस बुद्धि को अपने पर शक आ गया वो धार्मिक हो गई। क्योंकि जिसे अपने पे संदेह आया उसने ही अपने को बदला, संदेह ही ना तो बदलोगे क्यों? जिसने पहचाना कि मैं रुग्ण हूं, वही चिकित्सा की खोज में चला, औषधि की तलाश की। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा है कि मनुष्य के मन में झांक कर देखने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य समाज में मैत्री, प्रेम और दयादान के कृत्य भी होते हैं। कृपा पूर्वक बताएं कि मनुष्य की वृत्तियों में कौन ज्यादा बुनियादी और बली, प्रेम या घृणा, हिंसा या अहिंसा, सुख या दुख। इस तरह सोचना कि कौन ज्यादा बलवान है, प्रथम से ही गलत प्रश्न उठा लेना है। और अगर गलत प्रश्न पूछ लिया तो फिर उत्तर गलत होते चले जाते। कहते हैं अच्छे हाटलों में बैरा ये नहीं पूछता कि आप चाय लेंगे या नहीं, बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या काफी। फर्क समझे आप? अगर बैरा पूछे आप चाय लेंगे या नहीं, तो 50 मौके नहीं के, 50 मौके चाय के। बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या काफी, तो 50 मौके चाय के हैं, 50 मौके काफी के। आपको छूटने का मौका नहीं दे रहा है। आपको नहीं कहने का अवसर नहीं दे रहा है। इसलिए पश्चिम में तो विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि ग्राहक से कैसी बात करनी, क्या कहना, क्योंकि तुम्हारे कहने पर उसका उत्तर निर्भर करेगा। अगर तुम खुद ही 50% ना कहने का अवसर दे रहे हो तो तुम काहे के विक्रेता, तुमने आधी दुकान तो बर्बाद कर दी, आधा काम तो तुमने धंधा खराब ही कर लिया। ये तुमने गलत जगह से पूछ लिया। नहीं, ऐसा पूछना ठीक नहीं। मनुष्य जाति बहुत से ऐसे प्रश्नों से पीड़ित रही है जो गलत जगह से पूछे गए। बस एक दफा पूछ लिया कि झंझट खड़ी हो जाती। और हमारी आदतें सिखाने की, हमें सिखाया गया हां और ना की आदतें, अंधेरा और उजेला, रात और दिन, मौत और जिंदगी, हम दो हिस्सों में बांट के देखते। जिंदगी दो हिस्से में बटी नहीं है, जिंदगी तो सतरंगी है, इंद्रधनुष जैसी है। अब तुम पूछो इंद्रधनुष सफेद के काला तो क्या कहें? इंद्रधनुष ना काला ना सफेद, इंद्रधनुष सतरंगी है। तुम्हारे काले सफेद में प्रश्न बनते ही नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी तुमसे पूछे कि हां और ना में जवाब दे दें, अपनी पत्नी को अब भी पीटते हैं या नहीं? अगर कहो हां तो उसका मतलब अभी भी पीटते हैं, अगर कहो नहीं तो उसका मतलब पहले पीटते थे। उसने छोड़ा ही नहीं अवसर। यह भी हो सकता है कि आप पीटते ही ना हो। प्रश्न पूछा जाता है कि अहिंसा या हिंसा, प्रेम या घृणा, क्रोध या करुणा, ये जीवन को बांटने का गलत ढंग है। जीवन सतरंगा है, हां और नहीं में बटा हुआ नहीं। हां और नहीं के बीच बहुत सी सीढ़ियां हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। यहां बहुत मात्राएं हैं। यहां ऐसी भी जगह है जहां ना घृणा न प्रेम, उपेक्षा, उपेक्षा भी है। और यहां ऐसी भी घड़ियां हैं जहां घृणा भी और प्रेम भी, दोनों साथ साथ। मनस्वित कहते हैं तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को साधारणता घृणा भी करते हो। इसलिए तो पति पत्नियों के इतने झगड़े चलते, जिससे प्रेम उसी से घृणा। अब तुम उनसे कहो इतना झगड़ा चलता है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते? तुम बात ही गलत कर रहे हो। प्रेम भी है, छोड़ तो सकते ही नहीं, न छोड़ सकते हैं न साथ रह सकते। पति पत्नी का संबंध ऐसा संबंध है कि बिना भी नहीं रह सकते और साथ भी नहीं रह सकते। पत्नी दूर चली जाती तो याद आती है, पास चली आती है तो छुटकारे की कामना पैदा होने लगती है। अगर तुम जीवन को सीधा सीधा देखो, लेकिन अगर तुमने गणित से बांध लिया, तुमने कहा कि बात सीधी साफ करो, अगर पत्नी से लगाव है तो ठीक साथ रहो, अगर लगाव नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म करो। काश जिंदगी इतनी सीधी सीधी होती, ऐसा अंधेरे उजेले की तरह जिंदगी बटी होती। बटी नहीं है जिंदगी, बड़ी मिश्रित है। तुम अगर किसी से पूछो ठीक ठीक कहो प्रेम या घृणा, तो वो भी कहेगा, वो कहेगा पक्का करना मुश्किल, कभी घृणा भी होती है कभी प्रेम भी होता। सुबह घृणा होती शाम प्रेम हो जाता। खोजने से पता चला है कि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए गलत प्रश्न से शुरुआत हम न करें। जीवन में जहां जहां अति दिखाई पड़ती हो वहां समझ लेना कि बीच में सेतु भी होगा। रात भी कहीं दिन से अलग है, मौत कहीं जिंदगी से अलग है। मौत कहीं जिंदगी के बाहर थोड़ी घटती, जिंदगी के भीतर ही घटती। मौत आने के पहले मर थोड़ी जाते हो, जिंदा ही रहते हो। जब मौत आती तुम्हें जिंदा ही पाती। ऐसा थोड़ी कि पहले मर गए फिर मौत आती। मौत जिंदगी के भीतर है, बाहर नहीं। और मौत जिंदगी के विपरीत भी नहीं, क्योंकि तुम हटते हो तो किसी के लिए जगह खाली करते हो, कोई और जिंदा हो पाता है। बूढ़ा मरता है तो बच्चा पैदा हो पाता है। पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो नए पत्ते निकल आते हैं। पुराने पत्ते ना गिरे तो नए पत्ते ना निकलेंगे। तुम थोड़ा ऐसा सोचो, तुम्हारे बुजुर्ग अगर न मरते तो तुम नहीं हो सकते थे। तुम हो क्योंकि उनकी बड़ी कृपा थी, वो मर गए। अगर वो बने ही रहते और अड्डा जमाए बैठे रहते तुम कहां होते। वैज्ञानिक कहते हैं जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें दबी हर स्थान पर। इतने आदमी हो चुके, तुम थोड़ा सोचो कोई मरता ना तो जिंदगी मरने से बदतर हो जाती। सब बूढ़े, जरा सोचो तो। कौरव पांडव से लेके सब ऋषि मुनि, सब राक्षस, सब बैठे पृथ्वी पर, तुम भी आ गए। वो गला घोंट देते तुम्हारा, तुम्हारे लिए जगह कहां थी। तुम हो सके हो क्योंकि कोई नहीं हो गया। किसी के नहीं होने से तुम्हारा होना जुड़ा है। अब अगर तुम बहुत जिद करोगे कि मैं सदा ही बना रहूं तो तुम दूसरों के होने में बाधा बन जाओगे। जब तुम्हारा मौका आए तुम हट जाओ ताकि दूसरे हो सके। जीवन मौत के साथ साथ चल रहा है। मौत जीवन का ही उपाय है, मौत जीवन का ही हिस्सा है। एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए कि विरोधी जुड़े, फिर जीवन के संबंध में कई बातें साफ हो सकती। पूछा है कि बुनियादी कौन है, बलि कौन है। कोई भी नहीं, दोनों साथ साथ हैं। और अगर छोड़ना हो तो दोनों ही छोड़ने पड़ते। इसलिए तो भारत के मनुष्यों ने कहा कि अगर तुम्हें मौत से बचना हो तो जीवन का त्याग कर देना होगा। इसको तुम थोड़ा सोचो इस तरह से। बुद्ध पुरुषों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मौत से छुटकारा हो जाए तो जीवन से छुटकारा चाहिए। जब तक तुम जीवन को पकड़ोगे मौत भी आती ही रहेगी।

पकड़ोगे तो छूटेगा, न पकड़ोगे तो छूटने की बात ही समाप्त हो गई। इसलिए पूरब की सारी मनीषा एक बात कहती है, अगर तुम चाहते हो कि दुख मिट जाए तो सुख का त्याग कर दो। इसमें विरोध का नियम काम कर रहा है। तुम चाहते हो सुख तो बच जाए और दुख का त्याग हो जाए, तुम असंभव की कामना कर रहे हो। इसका यह अर्थ हुआ, अगर तुम जीवन से घृणा के रोग को छोड़ देना चाहते हो तो जिसे तुम प्रेम कहते हो उसे भी छोड़ दो। तब तुम्हारे जीवन में एक निष्कलुषता आएगी जिसमें न तो प्रेम होगा, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो नहीं होगा, जिसे तुम घृणा कहते हो वो भी नहीं होगी। कुछ नई ही गंध होगी, कुछ नई ही बात होगी, तुम्हारी भाषा में कहीं भी ना आ सके ऐसी कुछ बात होगी, अनिर्वचनीय कुछ होगा, अव्याख्य कुछ होगा। कुछ नए शब्द खोजने पड़ेंगे। इसलिए हम बुद्ध को प्रेमी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम तो बिना घृणा के हो नहीं सकता, इसलिए हमने उनको करुणावान कहा, जरा सा शब्द अलग किया। लेकिन करुणावान भी कहना क्या ठीक है, क्योंकि करुणा भी क्रोध के बिना नहीं हो सकती। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि बुद्ध के लिए तुम्हारी भाषा का कोई भी शब्द लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी शब्द तुम उपयोग करोगे उससे विपरीत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तुम बुद्ध को त्यागी नहीं कह सकते, क्योंकि त्यागी वो तभी हो सकते हैं जब भोगी हो। तुम उनको ज्ञानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानी वो तभी हो सकते हैं जब अज्ञानी भी हो। तुम उन्हें सन्यासी भी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासी वे तभी हो सकते हैं जब संसारी भी हो। फिर क्या कहो? इसलिए शास्त्र कहते हैं उस संबंध में चुप ही रहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, उस संबंध में मौन ही वक्तव्य है। तो पहली तो ये बात कि दोनों साथ साथ हैं, बराबर वजन के, न तो घृणा ज्यादा है न प्रेम ज्यादा है। और दूसरी बात, जीवन के प्रतिपल में स्थिति बदलती रहती। जब तुम जवान होते हो तब मोह ज्यादा लगता है, लगता है वो जवानी का भ्रम है। प्रेम ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। भोग ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। फिर तुम्हें बूढ़े हो जाओगे और त्याग की भाषा बोलने लगोगे, वो बुढ़ापे का भ्रम। इसलिए बूढ़े और जवान में बात बड़ी मुश्किल है, वो अलग अलग भाषा बोलते। बूढ़ा कहता है ये सब सपना है जो तुम बातें कर रहे हो, जवान कहता है ये सब पराजय की बातें, तुम्हारा हारा थकापन। अब तुम बूढ़े हो गए, मौत करीब आ रही है, तुम मौत से घबरा गए हो। बूढ़ा आस्तिक हो जाता है, ईश्वर को मानने लगता है, जवानी नास्तिक है। जवानी अपने सिवा किसी को भी मानना नहीं चाहती। जवान कहता है बूढ़ा मौत से डर गया इसलिए ईश्वर को मानने लगा, भयातुर है, ये भगवान सब भय से पैदा हुए। और बूढ़ा कहता है ये जवान अभी अंधा है, जवानी अंधी है, और अंधे को सब जगह हरा हरा सूझता है। ये सब उतर जाएगा नशा, ये सब नशा है, तब अकल आएगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं ना तो जवान को अकल है ना बूढ़े को। अकल का इससे कोई संबंध ही नहीं जवानी और बुढ़ापे से। जब तक तुम अपने भीतर ऐसी जगह ना खोज लोगे ना जो जवान है ना बूढ़ी, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बुद्धि का बुद्धि की किरण नहीं हो सकती। जवान जवानी से परेशान है और जवानी की भाषा बोल रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे से परेशान है, बुढ़ापे की भाषा बोल रहा है। हालांकि बूढ़े को लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, जवान को भी यही लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं। इसलिए तो पीढ़ियों के बीच एक दरार पड़ जाती, बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। बाप बिल्कुल भूल चुका कि वो भी कभी बेटा था और जवान था और इसी तरह की मूढ़ता की बातें उसने भी की थी, वो भूल ही जाता। मूढ़ता की बातें लोग याद ही नहीं रखते।

0: और जवान भी ये भूल जाता है कि ये बाप भी कभी जवान था, फिर बूढ़ा हुआ है। मैं आज जवान हूँ, कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, इसकी बात को ऐसे ही ना ठुकराऊँ। ये आज नहीं कल मेरे जीवन में भी आने ही वाली है, इसका ऐसा तिरस्कार ना करूँ। लेकिन नहीं, जवान भी अंधे, बूढ़े भी अंधे। आँख तो उसके पास होती जो अपने भीतर उस धारा को खोज लेता है जो समय के बाहर है, न जो जवान है न जो बूढ़ी। कल जिस गुलाब की डाली पर बैठी बुलबुल गाती थी गीत जवानी का पंचम स्वर में, हूँ देख रहा अब उसकी आंखों में आंसू, दब गया गीत उसका पतझर की हर हर में। जिस पाटल की पलकों की छाया के नीचे थी लगी हाट मदिरा की मधुपों का मेला, है आज पखुरियां बिखरी उसकी धरती पर, है खड़ा हुआ छाती पर मिट्टी का ढेला। ये तो रोज ही होता रहा है। अभी क्षण भर पहले जो फूल आकाश में इतराता था, क्षण भर बाद मिट्टी में दबा है। अभी क्षण भर पहले जवानी गीत गाती थी, क्षण भर बाद बुढ़ापा रो रहा है। मन तो रोज बदलता चला जाता है। कभी एक स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है, कभी दूसरा स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है। मन के साथ तो ये धोखा, ये लुका छिपी चलती ही रहती। मन का नियम यह है कि मन पूर्ण को नहीं देख सकता, इसे तुम समझने की कोशिश करो। मन केवल आधे को देख सकता है। जैसे मैं तुम्हारे हाथ में एक सिक्का दे दूं, सिक्का छोटा सा है, क्या तुम दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकोगे? जब तुम सिक्के का एक पहलू देखोगे दूसरा दब जाएगा, जब दूसरा देखोगे पहला दब जाएगा। आज तक किसी मनुष्य ने पूरा सिक्का नहीं देखा है। तुम सोचते हो कि तुमने देखा क्योंकि तुम दोनों अलग अलग देखे पहलुओं को कल्पना में जोड़ लेते हो, अन्यथा तुमने पूरा सिक्का नहीं देखा है। अगर तुम बहुत तर्कयुक्त हो तो तुम दूसरे सिक्के के संबंध में, दूसरे पहलू के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा विचारक विटगेंस्टीन ट्रेन से यात्रा कर रहा था, बड़ा तर्क युक्त मनुष्य था। पास ही एक मित्र बैठा था, खिड़की से उन्होंने झांक के देखा, सर्दी की सुबह धूप निकली है और एक खेत में बहुत सी भेड़ें खड़ी, उनके बाल अभी अभी काटे गए, वो सर्दी में थरथरा रही, धूप में एक दूसरे से सिकुड़ी खड़ी। मित्र ने विटगेंस्टीन को कहा, देखते हैं, मालूम होता है भेड़ों के बाल अभी अभी काटे गए, ठंड पड़ रही और भेड़ें ठंड में सिकुड़ रही। विटगेंस्टीन ने गौर से देखा और कहा, जहाँ तक इस तरफ दिखाई पड़ने वाले हिस्से का सवाल है, ज़रूर बाल काटे गए, उस तरफ की मैं नहीं जानता। भेड़ को पूरा तो कोई देख नहीं रहा, उस तरफ का क्या पता। इस तरफ से भेड़ें ठिठुर रही हैं ठंड में, ये पक्का है, उस तरफ की मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मन एक चीज के एक ही पहलू को देख पाता है एक बार में। जवानी में एक पहलू देखता है, बुढ़ापे तक जब तक सिक्का उलटता है दूसरा पहलू देख पाता है। तो जवानी में कहता है ये महत्वपूर्ण है, बुढ़ापे में कहने लगता है कुछ और महत्वपूर्ण है। जवानी में राग रंग महत्वपूर्ण था, बुढ़ापे में त्याग की भाषा महत्वपूर्ण हो जाती। जवानी में मदिरा ले जाता था, बुढ़ापे में मस्जिद जाने लगता है। जवानी में रस राग वैभव विलास, बुढ़ापे में सन्यास की बातें, त्याग विराग, सारी भाषा बदल जाती। पर होता कुल इतना ही है कि सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सिक्के के किसी भी पहलू को जरूरत से ज्यादा मूल्य मत दे देना, दूसरा भी उतना ही मूल्यवान है, दोनों बराबर मूल्य के। और अगर एक साथ तुमने दोनों का बराबर मूल्य आंक लिया, दोनों तुल गए तराजू पर बराबर, तो तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। उस व्यक्ति को ही मैं सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कहता हूं जिसने मन के सारे विरोधों को साथ रख के देख लिया और जिसने चुनाव करना बंद कर दिया और जिसने कहा ये पूरा मन ही लुका छिपी है, एक सामने आता है दूसरा छिप जाता है, फिर हम धोखे में पड़ जाते हैं। जो धोखे में नहीं पड़ता, जो दोनों को देखकर, दोनों के विरोध को देखकर, दोनों का अनिवार्य सत्संग देखकर दोनों से छुटकारा पा लेता है, द्वंद्व से जो मुक्त हो जाता है, द्वैत से दुई से जो मुक्त हो जाता है, वही परम शाश्वतता में ठहरता है, वही स्वभाव को उपलब्ध होता है। आखिरी प्रश्न, भगवान होने का आनंद लेना हो तो इसी क्षण भगवान हो कर लो, क्या यही आपकी देशना है? कल भ्रांति है, आज ही सत्य है। आने वाला क्षण भी आएगा या नहीं कोई भी कह नहीं सकता, जो आ गया है बस वही आ गया है, तो कल पर छोड़ कैसे सकते हो? कल है कहां? कल रात यूरोप से एक युवक आया और संन्यास्त हुआ। मैंने उससे पूछा कब तक रुकोगे? उसने कहा कल तक रुका हूं। तो मैंने कहा फिर तुम कभी जा ना सकोगे, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं। वो थोड़ा घबराया, अगर कल तक रुके हो तो सदा के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल जब आएगा तो आज हो जाता है, आज होकर ही कुछ आता है। समय का स्वभाव आज अभी है, कल तो मन की कल्पना है, कल तो मन का फैलाव है, कल तो आज से बचने का उपाय है। तो अगर तुम कहते हो कि कल लेंगे भगवान होने का आनंद, तो तुम कभी ना ले पाओगे। भगवान तो अभी है, यही है, सब साज सामान तैयार है, तुम गाना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? वीणा सामने रखी है, उंगलियां वीणा पर पड़ी हैं, तुम तार छेड़ना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें पक्का है यह हो सकता है वीणा कल भी हो तुम ना हो? कल पर छोड़ने की आदत संसार में खतरनाक से खतरनाक आदत है, आज ही जी लो। लेकिन तुम्हें सदा यही सिखाया गया है कल पर छोड़ो, क्योंकि तुम्हें यह सिखाया गया हर चीज की तैयारी करनी होगी, तैयारी के लिए कल की जरूरत है। आज कैसे भोगोगे? सितार बजानी तो पहले सीखनी भी तो पड़ेगी, सीखने के लिए कल तक ठहरना पड़ेगा। गीत गाना है तो कंठ को साधना भी तो पड़ेगा, आवाज को व्यवस्था तो देनी होगी, तो कल की जरूरत पड़ेगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं भगवान को भोगने के लिए कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं, जो बिना तैयारी उपलब्ध है वही भगवान है, जो तैयारी से मिलता है उसका नाम ही संसार है। तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी मेरी बात, मैं तुमसे फिर कहूं जो साधना से मिलता है उसका नाम संसार है, जो मिला ही हुआ है उसका नाम भगवान है। संसार के लिए कल की जरूरत है, समय की जरूरत है, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं। ये गीत कुछ ऐसा है कि कंठ को साधना नहीं बस गाना है, ये स्वर कुछ ऐसा है कि कोई प्रशिक्षण नहीं लेना, ऐसा ही है जैसे कि मोर नाचता है बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी नृत्यशाला में गए पक्षी गीत गा रहे हैं, बिना कंठ को साधे। तुम जैसे हो भगवान वैसे ही प्रकट होने को तैयार है। तुम जैसे हो वैसा ही भगवान ने तुम्हें स्वीकारा है। कल मैं एक गीत पढ़ता था, मुझे प्रीतिकर लगा। यह बाविकार मुकफ्फिर, यह फलसफी सायर, बहुत बुलंद फिजाओं में फड़फड़ाते, चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रत से खौफ खाते। कभी खुदा न करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमबींद मतानस से मुस्कुराते। रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ ज़दा फिक्र के चढ़ाते। है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी, कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते। दार्शनिक, पंडित, पुरोहित, विचारक, शास्त्रज्ञ बड़ी ऊंची हवाओं की बातें करते हैं, बड़े ऊंचे आसमानों की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें उन आसमानों में कभी उड़ते नहीं। जिंदगी उनकी जमीन पर सरकती हुई पाओगे। बातें आकाशों की, वो सिर्फ सपने हैं। और चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रत से खौफ खाते। और तुम सदा पाओगे कि जहां भी कोई जिंदा सुख हो उससे वो घबराते, मरे मराए सुखों की बातें करते हैं या कभी होने वाले सुखों की बातें करते हैं। किन्हीं स्वर्गों की जो होंगे, किन्हीं स्वर्गों की जो कभी थे। चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रत से खौफ खाते। और जहां भी जिंदगी की खुशी दिखाई पड़ती, कहीं कोई जिंदा सुख मालूम पड़ता, उससे घबराते। मैं तुमसे कहता हूं, जो जिंदा सुख से घबराए वो भगवान का दुश्मन है, क्योंकि फूल उसी के, हवा की लहरें उसी की, पक्षियों के गीत उसी के। ये जो नाच चल रहा है चारों तरफ, ये जो जीवन का उत्सव चल रहा है चारों तरफ, ये उसी का है। इससे जो घबराया, इससे जो शर्माया, इससे जो बचा, वो आदमी मुर्दा है, उसका भगवान भी मुर्दा होगा। जिंदा भगवान तो यहां है, मुर्दा भगवान कहीं और, सात आसमानों के पार। कभी खुदा ना करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमीद मतानस से मुस्कुराते। और ऐसे लोग हंसते तो हैं ही नहीं, और भगवान न करे कि कभी वो हंसे भी, क्योंकि वो हंसते हैं तो उनकी हंसी में भी ऐसी घबराहट, ऐसी गंभीरता, ऐसी निंदा, उनकी हंसी में भी हंसी नहीं होती, उनकी हंसी में भी लाश की सड़ांध होती। रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, ये पंथियां बड़ी प्यारी हैं। जिंदगी के स्वर बड़े गर्म गर्म हैं, जिंदा हैं तो गर्म है। रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, और ये जिंदगी का बाजा है, जिंदगी का साज है, इसके गर्म गर्म तार हैं, तैयार हैं कि छेड़ो अभी, निमंत्रण है, बुलावा है कि नाचो अभी, गाओ अभी। रबाबे जीस के आतिस मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ जदा फिक्र के चढ़ाते। और ये जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, मौलवी, ये इन गर्म गर्म जिंदगी की वीणा के तारों पर फिक्र और चिंता की बर्फ चढ़ाते, ठंडा कर देते, मार डालते। है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी, और ये बातचीतें और ये विचारों की उड़ानें सब मरी हुई है, कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते, जिससे जिंदगी ऐंठ जाती, जीवन के अंग ऐंठ जाते। ये सब बातें जिंदगी के विपरीत हैं, मौत की पक्षपाती। तुमने जिन्हें अब तक धर्मों की तरह जाना है, बुद्धों को छोड़ दो, महावीरों, कृष्णों को छोड़ दो, उनके धर्म से तुम्हारी कोई पहचान नहीं। उनका तो धर्म यही है कि भगवान अभी हो जाओ, उनका तो सभी का संदेश यही है कि वर्तमान के अतिरिक्त तो और कोई समय नहीं। उनने तो सभी ने कहा है कि इसी क्षण को तुम शाश्वत बना लो, इसी में डूब जाओ। लेकिन उनके नाम पर पंडितों पुरोहितों ने जो संप्रदाय खड़े किए वो सब तुम्हें कल की तैयारी कहते हैं। वो कहते हैं आज छोड़ो, कल की तैयारी करो। उनकी वजह से ही तुम उदास हो, उनकी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी के अंग ऐंठ गए, उनकी वजह से तुम कुछ भी उत्सव नहीं मना पाते। गुरजीएफ कहता था कि सभी धर्म भगवान के खिलाफ है। बड़ा कठिन वक्तव्य है, क्योंकि हमें तो लगता है धर्म तो भगवान के पक्षपाती हैं। गुरजीएफ कहता है सभी धर्म भगवान के खिलाफ। मैं भी कहता हूं धार्मिक व्यक्ति भगवान के खिलाफ नहीं होता, धर्म सभी भगवान के खिलाफ। धार्मिक व्यक्ति तो कभी कभार होता है। जो धर्मों की जमातें वो परमात्मा के विपरीत है। तुम्हारे महात्मा सभी परमात्मा के विपरीत है। महात्मा तुम्हें जिंदगी को छोड़ना सिखाते हैं और परमात्मा ने तुम्हें जिंदगी दी है, और महात्मा कहते हैं छोड़ो और परमात्मा कहता है भोगो, जीवन परम भोग है। अगर तुमने मेरी बातों को ठीक से समझा तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन की ऊंचाई बनाओ, तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन के विपरीत मत रखो, अन्यथा तुम अड़चन में पड़ोगे। न तुम जिंदगी के हो पाओगे, न परमात्मा के हो पाओगे। तुम दो नावों में सवार हो जाओगे जो विपरीत जा रही। तुम परमात्मा को जीवन का स्वर समझो और तुम जीवन के प्रतिपल को प्रार्थना बनाओ। तुम जीवन को इस ढंग से जियो कि वो धार्मिक हो जाए। धर्म के लिए जीवन में अलग से खंड मत खोजो, धर्म को पूरे जीवन पर फैल जाने दो। लेकिन दुखी लोग हैं जो दुख को पकड़ते हैं। वो जीवन में सब तरह का दुख का आयोजन करते हैं। पहले धन के नाम पर दुखी होते, पद के नाम पर दुखी होते, फिर किसी तरह इनसे छुटकारा होता तो भगवान के नाम पर दुखी होते, लेकिन दुख की आदत उनकी छूटती नहीं। तुझको मस्जिद है, मुझको मैखाना, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है। कुछ हैं जो जिंदगी को मधुशाला बना लेते, जिनकी जिंदगी एक उत्सव होती, महोत्सव, एक अहिर्निस आनंद, और कुछ हैं जो जिंदगी को मस्जिद बना लेते, चर्च, उदास, मुर्दा, मरघट का हिस्सा मालूम पड़ता है जीवन का नहीं। अपनी अपनी किस्मत, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है, हे धर्मगुरु अपनी अपनी किस्मत है। तुम धर्मगुरु बनने की चेष्टा में मत पड़ना, तुम धार्मिक होने की फिक्र छोड़ो, तुम परमात्मा के उत्सव को अंगीकार करो। जो जीवन में मिला है उसे इतनी गहराई से भोगो कि उसकी भोग की गहराई में तुम्हें सब जगह से परमात्मा के दर्शन होने लगे। भोजन भी करो तो ऐसे अहोभाव से कि उपनिषद के वचन सत्य हो जाएं, अन्नम ब्रह्म। सौंदर्य को भी देखो तो इतने अहोभाव से कि सभी सौंदर्य उसी की सौंदर्य की झलक लाने लगे। उठो तो उसमें, बैठो तो उसमें, चलो तो उसमें, जागो तो उसमें, सो तो उसमें, परमात्मा ही तुम्हारा लिबास हो जाए, वो तुम्हें घेरे रहे। तो ही मैं कहता हूं तुम धार्मिक हो पाओगे। धार्मिक होना 24 घंटे का काम है, इसमें छुट्टी का उपाय नहीं, इसमें रविवार का दिन भी नहीं आता। ईसाइयों की कहानी है कि परमात्मा ने 6 दिन संसार बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। अब पश्चिम में यूनियनवादी लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं 5 दिन होना चाहिए काम, 7-6 दिन। मुझे लगता है कि यूनियनवादियों ने ही उसको राजी किया होगा पहले भी कि तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन छुट्टी रख, नहीं तो मामला सब खराब हो जाएगा। जहां तक मेरे देखे परमात्मा 7ों दिन काम कर रहा है अहिर्निश। छुट्टी तो कोई तब चाहता है जब काम दुख होता है, जब काम ही आनंद हो तो कोई छुट्टी चाहता है? किसी ने कभी प्रेम से छुट्टी चाही? काम से लोग छुट्टी चाहते हैं क्योंकि काम उनका प्रेम नहीं। तुम परमात्मा से छुट्टी ना चाहो तब तो एक ही उपाय है कि तुम जो करो वो परमात्मा को ही निवेदित हो, समर्पित हो। तुम जो करो उसमें ही प्रार्थना की गंध समाविष्ट होने लगे, प्रार्थना की धूप तुम्हारे जीवन को चारों तरफ से घेर ले, सुवासित कर दे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो वो झूठी रहेगी, क्योंकि परमात्मा सदा वर्तमान का है। भविष्य के परमात्मा तुम्हारी ईजादें, धोखे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में मस्ती ना होगी, मस्ती तो केवल अभी हो सकती। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, न तो तुम्हारी प्रार्थना में मस्ती है, न तुम्हारी प्रार्थना में परमात्मा है। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर। प्रार्थना को मस्ती बनाओ, अच्छा हो मैं ऐसा कहूं, मस्ती को प्रार्थना बनाओ। नाचो गाओ, इसी क्षण यह हो सकता है। परमात्मा कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और कब तक प्रतीक्षा करवाओगे? निश्चित ही यही मेरी देशना है कि अगर भगवान को जीना हो तो अभी, न जीना हो तो साफ कहो कि हम जीना ही नहीं चाहते, कल पर क्यों टालते हो? कम से कम ईमानदार तो रहो, इतना ही कहो कि हमें लेना देना नहीं, हमें प्रसन्न नहीं होना, हमें आनंदित नहीं होना, हमें दुखी रहना है। होश से दुखी रहो, कम से कम सच्चे तो रहोगे। और जो होश से दुखी है ज्यादा दिन दुखी नहीं रह सकता। आज नहीं कल पहचाने का कि मैं ये क्या कर रहा हूं, एक महा अवसर मिला था गंवाए दे रहा हूं। जहां कमल के फूल ही फूल खिल सकते थे वहां कांटे ही कांटे बनाए ले रहा हूं। नहीं, तुम्हारी तरकीब यह है कि तुम कहते हो नहीं होना तो है प्रसन्न, लेकिन कल, कल के बहाने आज तुम दुखी हो लोगे। तुम कहोगे आज तो कैसे खुश हो सकते हैं, कल होंगे, आज तो दुख में है सो बिता लेंगे किसी तरह, गुजार लेंगे किसी तरह। लेकिन आज के ही गुजरे होने से तो कल निकलेगा। अगर आज दुख में गया तो कल सुखी नहीं हो सकता, इसी दुख से तो आएगा, इसी दुख पर तो बुनियाद पड़ेगी, इसी दुख पर तो कल का मंदिर खड़ा होगा। यही ईंटें तो कल के मंदिर को बनाएंगी जिनको तुम आज का क्षण कह के गंवा रहे हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं आज ही मंदिर बना लो, मंदिर बना ही है, तुम आज ही प्रार्थना कर लो, कल को कल पर छोड़ो। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, कल कल की चिंता स्वयं कर लेगा। तुम आज जी लो। धार्मिक व्यक्ति मैं उसी को कहता हूं जिसने वर्तमान में जीने को ही एकमात्र जीवन बना लिया, फिर उसे परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता। सूफी फकीर अल हिल्लाज मंसूर ने कहा है कि इसमें भी क्या लुत्फ कि हम परमात्मा को खोजने जाएं, ऐसे भी ढंग है कि वो खोजता हुआ आता है। मैं तुम्हें ऐसा ही ढंग दे रहा हूं कि वो तुम्हें खोजता हुआ आए, ये भी कोई मजे की बात है कि तुम खोजते फिरो उसे। खोजोगे भी कहां, उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं। तुम अगर उत्सव में जियो तो वो तुम्हें खोज लेगा, वो उत्सव का संग साथी है। वो उत्सव को प्रेम करता है, इसलिए तो इतने फूल हैं, इतने गीत हैं, इतने चांद तारे। वो उत्सव का दीवाना है। तुमने उत्सव मनाया कि तुमने पाती लिख दी, तुमने उत्सव मनाया कि तुम्हारी खबर पहुंच गई। तुम नाचो, नाच की ही गहराई में तुम अचानक पाओगे उसके हाथ तुम्हारे हाथ में आ गए, वो तुम्हारे साथ नाच रहा है। पर नाच में ही पाया जा सकता है। ऐसी उदास मुर्दा शक्लें बना के लोग बैठे, परमात्मा भी झिझकता है। उसके साथ होने का एक ही ढंग है कि तुम नाचो।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार। विषय था Why do complications arise in human life? मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? आशा करता हूं इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते। उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है। तो चलिए मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता। मेरे साथ जुड़ रही है मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 का खिताब आपको मिला है और इम्प्रेस यूनिवर्स 2018 और उसके बाद 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब आपको मिला है और आप पेशे से डॉक्टर चेतना अग्रवाल नाम है मैम का। और तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं स्टूडियो में आकर?
1: ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है ये और बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल।
0: मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत रही पेशे से? आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आपके आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
1: देखिए, ताज हमने, हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
0: जी,
1: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था। हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके। तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ। पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया। और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017, जो कि उदयपुर में हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
0: जी।
1: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में। और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स, जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
0: खिताब
1: है, बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में ग्वांगजू में
0: जी।
1: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019 और वहां पे मिसेस काइंडनेस का सबटाइटल भी मिला था।
0: ग्रेट ग्रेट। घर से कितना आपको सपोर्ट मिला?
1: घर से पूरा सपोर्ट मिला है इसमें।
0: अच्छा,
1: yes.
0: तो ये जो शुरुआत रही है, यूं कहें कि बचपन से आपके दिल दिमाग में रहा है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है।
1: फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर था।
0: ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो बातों का सिलसिला है लिस्टनर्स लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड डॉक्टर चेतना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी और भी कुछ खास आना बाकी है, आप कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018

0: प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, और वहीं 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा, बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश। पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओह ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है, कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है। तो काफी इसमें जाता
0: मेहनत है,
1: बहुत मेहनत लगती है। और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, ये जो तैयारी है, ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
1: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे। पर कंपटीशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
0: ग्रेट, मैं सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
1: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी, तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
0: ओह ग्रेट,
1: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमें ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
0: ओके, डॉक्टर जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक बात होती ही होती है, तो इस मामले में या यूं कहें कि खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है?
1: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो वो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं, वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे। और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
0: जी जी,
1: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
0: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
1: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है अपने लकी, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
0: क्या बात है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते हैं ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के, दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ?
1: ए दिल है मुश्किल।
0: क्या बात है, सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।
2: तू

0: ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं। आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में एक ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है।
0: एक्सीलेंट।
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं।
0: वेरी गुड। यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं, बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा। आप कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं बोल
0: रही हूं। प्लीज प्लीज प्लीज।
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं।
0: क्या बात है, इस बात को यूं कह सकते हैं जब भी मिले मौका मार दो चौका। बहुत खूब बहुत खूब। और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये जरूरी है कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए। आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, उसके आप विनर भी रही हैं। एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बनके भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैटर्न्स में, तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन की फिजिकल ब्यूटी या कैसे वो बोल कैसे रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया है, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को। तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं।
0: वेरी गुड। मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं, इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पज से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ। और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट। और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ। और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वडोदरा। और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं ISA आर्ट एंड लिटरेचर क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।
0: ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारे उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का?
1: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं। मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली।
0: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब हैं, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस,
1: इतना कंफर्टेबल फील करके करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो बातें हैं वो खुलकर बात कर पाए।
1: बिल्कुल।
0: और आप जब जज होती हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर, आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो लिसनर सुनते रहिए, थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशादा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, और किस तरीके से उसका जो दर्द है एक मरीज का वो फुर्र हो जाता है, दूर हो जाता है।
1: सर ये तो अभी तो मुझे लगता है हम अंदर से इतना ज्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं और ब्लेस्ड हैं, इसीलिए हर समय हम खुश रहते हैं बेसिकली।
0: okay.
1: और हर मोमेंट को जीते हैं।
0: रियली नाइस, रियली नाइस। तो आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ से है, और किस तरीके से आपने अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार किया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आई हैं शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में?
1: सर बेसिकली नेटिव मेरा है वाराणसी, बट क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है
0: जी।
1: स्कूलिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग सब वहीं से होने के बाद यहाँ शादी हुई मेरी, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला। मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन
0: अक्षय कुमार को फॉलो करती है। ग्रेट, गुड जॉब डॉक्टर जी।
1: और मेडिटेशन करती हूँ डेली, और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पॉम्प फटने से पहले आप जग जाते हैं लेकिन आप सोते कितने बजे?
1: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती हूँ। जी जी जी। और मैंने अपनी बेटी को भी इतना ही डिसिप्लिन रखा है। लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
0: माँ पर नहीं।
1: सर अगर

0: ऐसा नहीं करें तो मॉर्निंग 4 o'clock नहीं हो पाता।
1: डॉक्टर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आपको बैलेंस किया कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं, खटिया नहीं होगा सॉरी बैठ छोड़ देते हैं आप तो
0: जी हाँ।
1: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
0: सर, ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है, लोगों से नहीं हो पाता है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे। तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
1: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बना कर रखें? एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए।
0: सर, मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाए जा रही है वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया है तो बातों बातों में कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ।
0: सर, स्ट्रेस तो टच वुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है तो सिर्फ 2 लाइन्स
1: जी प्लीज।
0: ये

0: खुदा बड़ा है।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और लिसनर्स, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर प्राची आपसे बात कर रही हैं, इन बातों को गांठ बांध लीजिए। जिंदगी वाकई बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। और अक्सर मैं भी खुद लाइनों को यहाँ जिक्र करता रहता हूँ कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। डॉक्टर, अदरवाइज तो लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन लेने का नहीं देने का। मेरा खुद का मानना है कि ना आप टेंशन लीजिए ना किसी को दीजिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाकर रखिए और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहिए। और आके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप जैसे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, और इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारी रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
0: थैंक यू सो मच सर, इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू।
1: लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

आवाज से दुनिया भर छा जाने का स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

राम राम दोस्त सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बात किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:11 हो चुके हैं, 28 तारीख है यानी कि मंडे का दिन, और मंडे का दिन यानी कि ट्रैफिक का दिन होता है। आप अपने घर से आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि घर वापसी का मतलब मेरा ये कि यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन आपके घर पर आपके जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जैसे कि मैं सुबह सुबह अभी आया हूँ मथुरा से, तो ऑन रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और नोएडा एक्सपो की वजह से नॉलेज पार्क के आसपास ट्रैफिक ज्यादा है, और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब हैं मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि अगर आप सवारी पिक ड्रॉप कर रहे हैं तो बहुत सोचकर समझकर उतारेगा आगे पीछे, वरना दिक्कत हो सकती है। फिलहाल मौसम का जो मिजाज नहीं मिजाज होता है, अच्छा ठीक है, जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम ने यूं कहें कि पलटी मारी है, बाजी मारी है, और बाजी यूं मार ली है कि मौसम बदला है, और जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां लोगों के सामने हो रही है। लेकिन फिर भी आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि रिमझिम रुनझुन बारिश हो सकती है, और आज अधिकतम टेम्परेचर 29 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और आसमान और नमी की अगर मैं बात करूं तो आसमान आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहने की चांसेस भी हैं। हवा में जो ह्यूमिडिटी है यानी कि नमी का स्तर लगभग 80 से 93% तक दर्ज किया जा सकता है, और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक बोले तो AQI 68 है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में जानेंगे जरूर, साथ ही मौसम के बारे में बात करेंगे। सो टर्न गो एनीवेयर एल्टीट्यूड ऑल योर सुरक्षा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बस ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेगा। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरक्षा 90.8 एफएम। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरे होश आवाज में चलाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: बिल्कुल आपने सही सुना कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगर आप सोच लें, ठान लें तो निश्चित तौर पर बीमारी से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ अगर आपके साथ। 9:23 हो चुका है, 28 तारीख है यानी कि मंडे का दिन, और ईश्वर से यही प्रार्थना कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे। भाई 100 बातों की

0: जान है तो जान है, सेहत सही तो लाभ कही, और इसीलिए हर रोज सुबह 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम होता है आपके लिए, क्योंकि पोषण माह चल रहा है। पोषण माह में 9 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, इस पर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं सिर्फ सुरुषा 90.8 FM पर। चलिए, मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में दिल्ली NCR में भी बादल छाए हुए, कब बारिश हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जहां जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वहां आपको कुछ नजर नहीं आता कि गड्ढे हैं या नहीं, तो अननेसेसरी आप अनावश्यक तौर पर उसमें गाड़ी फंसाने की कोशिश न करेगा, और जहां रास्ता क्लियर है वहीं से चलेगा और अनावश्यक हॉर्न न बजाएगा। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और फिर
1: और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार, ऑडियो सुरुषादा 90.8 FM, इनकलाबी जिद्दी।
0: क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑडियो सुरुषादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हैव अ नाइस डे। क्या बात है, आए हैं, आ जाओ।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा।

0: देश जीतेगा।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: गगन कोकरी फतेह।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम मैं हूं गगन आपके साथ।
1: और ख्वाचिनो हजरात ये भी बोलना?
0: नहीं नहीं नहीं वो मैं बोलता हूँ अच्छा लगू।
1: नहीं नहीं मैं सीख रहा हूँ, आई वॉन्ट लर्न उर्दू फ्रॉम यू।
0: ये तो अंग्रेजी निकल गई। हाँ अंग्रेजी भी सीखते रहे, हिंदी भी सीखते रहे, उर्दू भी सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।
1: बिकॉज वी विल गो देयर इन उज़्बेकिस्तान।
0: क्यों?
1: देयर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय, वहां पे भी हम सामुदायिक रेडियो चलाएंगे और गगन जाएगा।
0: चलिए वहां की भी भाषा हम सीख लेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि नोएडा एक्सपो सेंटर की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर 25 से लेकर 29 सितंबर तक ये बहुत बड़ा मेला चल रहा है और यहाँ इस मेले में अगर आप शिरकत कर रहे हैं तो एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें आपको जानने को, सीखने को, देखने को, समझने को मिलेंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन किया जा रहा है और नो एंट्री की अगर मैं बात करूं तो वीआईपी मूवमेंट की वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और आसपास के जो रोड्स हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो भारी वाहन है या यूं कहें कि माल वाहक, हल्के माल वाहक कॉमर्शियल व्हीकल की आवाजाही पर रोक है, अर्थात नो एंट्री है। और यदि आप इस रूट पर यात्रा कर रहे हैं, आवन जावन कर रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता आपको सुझाया जा रहा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक छत के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन, यानी कि अगर आपके सपोज करिए कि मैं मथुरा से आता हूं तो मथुरा में कचौरी, जबेली, अजी जलेबी, हाँ जलेबी, पेड़ा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप आगरा से आते हैं तो आपको पेठा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इस मेले में आपको जरूर शिरकत करनी चाहिए क्योंकि खाने को, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
2: कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भादा स्टूडियो क्लॉक 9:44 हो चुके हैं और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 28 तारीख है, मंडे का दिन है। जाहिर सी बात है कि कुछ रोज पहले हम एक बात सुन रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या होगा, क्योंकि हमने खबर सुनी थी कि 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल रहने वाली, बैंक हड़ताल। लेकिन फाइनली खबर ये आ रही कि हो सकता है कि आप इस खबर से खबरदार हैं या नहीं है, तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच देर रात एक बातचीत रही है और इस बातचीत का जो हल है बहुत सकारात्मक तरीके से सबके हित में, जनहित में निकाला गया है। यानी कि कुल मिलाकर सोमवार को देश भर में जो सभी सरकारी बैंकों की स्ट्राइक होने वाली थी, निजी बैंक भी इसमें शामिल थे, अब ये 3 दिन खुले रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, है ना। तो इसके बारे में आप मालूमात कर सकते हैं, अपने बैंक जा सकते हैं ताकि आपका जो कैश का ट्रांजैक्शन का लेन देन है, रुपया अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी आपके सामने आने वाली नहीं है, ग्राहकों के लिए बहुत राहत है। और चूंकि 30 सितंबर को बैंकों की जो यू कहें कि हाफ ईयरली क्लोजिंग है यानी कि अर्धवार्षिक क्लोजिंग है, और इसलिए इस हड़ताल के टलने से ये समझिए कि चेक क्लियरेंस, कैश डिपॉजिट और जो दूसरे तीसरे जरूरी काम है बिना रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी हर्डल के आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की समस्या का समाधान बातचीत से निकाला ही जा सकता है और निकलना भी चाहिए, है ना। और बड़ी बड़ी बातचीत जब होती है एक टेबल पर, निश्चित तौर पर वो सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर लीजिए, प्रोफेसर से बात कर लीजिए या किसी खास से बातचीत कर लीजिए। हो सकता है कि कहीं कोई गलतफहमी है, नाराजगी है, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि वो दूर हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ओनली सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:46 28 तारीख।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hey, suno, suno, suno! सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: जरूरी सूचना, मीका जब गाते हैं तो कोई गाना फीका हो नहीं सकता। विकी ने अपने कौशल से इस गाने को बहुत खूबसूरती से निभाया और साथ ही साथ बरसात के मौसम में बिजली से दूर रहो वरना चिपक जाओगे, लेने के देने बढ़ सकते। फिर ना कहना कि गगन ने सुनो शायद 90.8 FM पे बताया नहीं। हाय राम, पानी लाओ बेटा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
0: तो मैं एक सांस में बोलने की क्या जरूरत थी। अच्छा मैं पानी पी कर आता हूँ। मैंने शंकर महादेवन को थोड़ा कॉपी किया। गुड मॉर्निंग। चलिए नमस्कार, 51 मिनट हो चुके हैं, 28 तारीख है। विराट जीत का हम जिक्र करना चाहेंगे, विराट कोहली का हम जिक्र करना चाहेंगे, कल के ओडीआई का हम लोग जिक्र करना चाहेंगे और विराट को सैल्यूट करना चाहेंगे, उनकी कामयाबी को, यूं कहें कि उनके जश्न को मनाना चाहेंगे, उनके साथ हम सेलिब्रेट करना चाहेंगे। वाह वाह वाह वाह। एक बार सचिन पाजी से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि आपके रिकॉर्ड्स को कौन तोड़ेगा। जिस सभागार में वो बैठे थे वहां पर विराट भी थे, रोहित भी थे और दोनों का नाम उन्होंने लिया और फाइनली जिस घड़ी का पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था, निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं और जब इस तरीके से कोई इंसान आगे बढ़ता है, खासकर जो प्लेयर इंडिया का हो, तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। और कल ऐसा ही भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल कर ली है और रविवार को यानी कि कल तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया और 296 रनों का लक्ष्य था जिसे इंडिया ने 42 ओवर में हासिल कर लिया। और विराट कोहली की जो अहम भूमिका थी, 88 गेंदों पर 139 रन उन्होंने, 10 चौके और 9 छक्के के वजह से उन्होंने इतने सारे रन बनाए और कोहली के ओडीआई करियर का ये 55वां ओवरऑल 86वां इंटरनेशनल शतक रहा। और कोहली ने कप्तान शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी की और जिसकी वजह से ये मैच एक तरफा होता चला गया। शुभमन ने 13 चौके और 1 सिक्स की मदद से 108 बॉल पर 110 रनों की पारी खेली और शुभमन के ओडीआई करियर की ये 10वीं सेंचुरी रही। तो इस तरीके से इंडिया को लख लख बधाइयां, विराट कोहली को लख लख बधाइयां, निरंतर आप आगे बढ़ते रहें, हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो लक्ष्य है वो है वर्ष 2027 का वर्ल्ड कप। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑलियो जरूर शादा 90.8 FM, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होश आवाज में चलाएगा। समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि यातायात के नियम का पालन करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

ब्यूटीफुल ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसीरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: कौन सी? आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना, गाना बुझे कि नहीं।
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिर

ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग थ्रू शॉट द 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। यातायात के नियमों का अच्छी तरीके से पालन करेगा और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुनो शॉट द 90.8 एफएम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

में फल और सब्जी घर पर ही उगावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम। ये अभियान

संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: कर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम सीएसआई लाभकारी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है और जो हमारी आशा बहन जी हैं वो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लोगों को जागरूक करने में घर घर जाती हैं और बहुत सी बातें वो बताती भी हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं आशा बहन जी, साधना जी। तो सबसे पहले तो बहन जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप आशा हैं तो एक आशा के तौर पर क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं?
1: सर, हमें टीकाकरण पर जाना पड़ता है। टीकाकरण में जो गर्भवती वगैरह मिलती हैं हमें उन्हें बुलाना पड़ता है, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है, वो टीकाकरण करवाते हैं, नहीं आते हैं तो उन्हें बार बार ये समझाना पड़ता है।
0: अच्छा, जैसे कि आप घर घर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा।
1: सर, जैसे ये कह देते हैं कि जो है ना, क्या नाम है, हमारे बच्चों को तो बुखार आएगा, हम नहीं लगवाएंगे, उनके पापा ने मना कर दिया, या 6 महीने तक अपना दूध भी नहीं पिलाते तो हम बताते हैं उन्हें कि अपना 6 महीने तक अपना दूध पिलाया करो। और जो है ना कि बच्चे को टीका लगता है तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चा आपका ठीक है, जब आपको बच्चे को टीका लगेगा तभी तो आपका बच्चा ठीक है, इसलिए हम कई कई बार उनके घर जाके बताते हैं, समझाते हैं।
0: तो जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, किसी का प्रसव होने वाला हो, आप हॉस्पिटल ले जाती हैं तो किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: पहले हम 3 महीने तक तो उनका 3रे महीने पर टीकाकरण करवाते हैं, फिर अगले महीने उनका 4 बार चेकअप करवाते हैं, 2 उनका टीका लगवाने के बाद उनका फिर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हमें ये पूछना पड़ता है उनसे कि सर क्या आप डिलीवरी कहाँ करवाएंगे सरकारी में, तो वो जब सरकारी के लिए तैयार होते हैं तो हम उन्हें सरकारी को पूरा चीज़ दिखाते हैं, आपको पूरा जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, घर डिलीवरी मत करना वरना घर में ये खतरे हो जाएंगे।
0: और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको खान पान की क्या बात बताती हैं?
1: हरीदार सब्जियाँ, दाल रोटी, यही सब सारा सामान बताते हैं सर।
0: और आखिर में जानना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में, जैसे आप घर में क्या बताती हैं जाके लोगों को?
1: हाथ धो के खाना पीना, साफ सफाई के बारे में बताते हैं सर। और बच्चे को मतलब क्या नाम है, मच्छरदानी के अंदर सुलाया करो क्योंकि मच्छर काटने से बुखार हो जाता, यही चीज जानकारी वगैरह देते हैं।
0: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनकौर पर ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर के पद पर कार्यरत हूँ। ये पोषण माह चल रहा है। इस पोषण माह में टीबी के पेशेंटों का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि हम टीबी के पेशेंट को जर्नली देखते हैं तो टीबी का पेशेंट बड़ा ही वीक होता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया जो होता है कहीं ना कहीं उसके इम्यून सिस्टम पे वार करता है और उसको इम्यून सिस्टम को वो कहीं ना कहीं उसको वीक कर देता है। तो अभी हमको इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए उसके पोषण पे ध्यान देना है। पोषण के लिए जो टीबी पेशेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन उसको लेना चाहिए। आपको अंकुरित दालें लेनी चाहिए, चने लेने चाहिए, दलिया लेना चाहिए और जो भी फाइबर युक्त डाइट है उसको उसको फॉलो करना है। अगर पोषण को हम उसका मजबूत कर देंगे तो कहीं ना कहीं जैसे ही हमारा अच्छा उस पोषण हम उसको देते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत जल्दी मजबूत होगा। जब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया कमजोर होगा और बैक्टीरिया किल होगा और वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8
2: FM। नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूं आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इसमें?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
6: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं वही आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारे किसान बहन भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती है, क्योंकि जब कभी खेती में घाटा हो जाता है तो पशुपालन से वो भरपाई हो जाती है और एक संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए खेती के साथ साथ पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है। और किसान मित्रों, आपको तो पता ही है कि गांव में रहने वाले जो हमारे किसान बहन भाई हैं खेती के साथ साथ अधिकतर पशुपालन से अच्छी खासी कमाई कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। आज पशुपालन व्यवसाय में अच्छी नस्ल के बछड़ा बछिया विभिन्न उद्देश्य से उनका पालन किया जा रहा है। जहां बछिया और पड़िया का पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है तो वहीं बछड़े का पालन खेती संबंधित कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे में इनके खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बदलते मौसम का प्रभाव खेती के साथ साथ हमारे पशुओं पर भी पड़ता है और साथ ही साथ हमारे जो नवजात पशु हैं उनकी देखभाल करना तो बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, गांव में बेहतर आमदनी के लिए लोग दुग्ध उत्पादन की ओर तेजी से बढ़े हैं और इसमें अच्छी आय होने के कारण भारत में डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में पुरुष वर्ग खेतों में काम कर अन्न उत्पादन में लगा रहता है तो हमारी जो महिला हैं वो खेती के अलावा पशुपालन में लगकर घर में समृद्धि लाने में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो ही पशुपालन का काम देखती हैं। किसान मित्रों, हमारी भारतीय महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ ना कुछ करके घर को मजबूत करने में लगी रहती हैं। गांव में आय के बेहतर रास्ते न होने के कारण महिलाएं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं। गांव में पशुपालन के क्षेत्र में 70% महिलाएं लगी हुई हैं और पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन में इन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। सहभागिता को अपनाकर महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं बल्कि देश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत कर रही हैं। किसान मित्रों, आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डेयरी आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों पुरानी परंपरा रही है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। तो आपने जाना कि कितना जरूरी है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। और किसान मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात पर और गौर करने की जरूरत है कि खेती से तो हमें 3 महीने बाद 6 महीने बाद उत्पादन मिलता है लेकिन पशुओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आजकल तो पशुओं के गोबर के कंडे भी बेचे जाते हैं और गोबर का बड़ा अच्छा खाद बनता है, वो भी हमारे किसान भाई प्लांट लगाकर उसको बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपको और अधिक आर्थिक लाभ होता है। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब कभी आपको खेती में घाटा हो जाता है, कभी कोई फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाती है या बाजार अच्छा नहीं मिल पाता है तो उसकी भरपाई हमारे पशु अपने उत्पादन से कर देते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पशुपालन बेहतर आमदनी का स्रोत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं उपेंद्र राणा।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे उपेंद्र राणा। किसान मित्रों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ इस व्यवसाय की तरफ भी रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। मछली पालन व्यवसाय में हमारे किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अगर कोई किसान भाई या कोई युवा मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो नीली क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक साथ सम्मिलित कर दिया गया और जिसका नाम रखा गया है नीली क्रांति योजना। इस योजना में मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य की मार्केटिंग, मछुआरा बीमा समेत मत्स्य विकास के सारे सेक्टरों को रखा गया है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान की भी सुविधा दी गई है। इस योजना में जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए सरकार ने 40% अनुदान की सुविधा रखी है, वहीं एससी एसटी या महिला वर्ग के लिए सरकार ने 60% अनुदान की सुविधा रखी है। अगर किसी किसान भाई को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो वो अपने जिले के जनपदीय कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही नीली क्रांति योजना की। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं तरुण बाल्यान और किस्सा रहेगा सरवर

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे तरुण बाल्यान। और किसान मित्रों, अब बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे किसानों को स्केल की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने में मदद करती है। हमारे सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों को एफपीओ के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है। एफपीओ छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वे अपने सदस्यों की उपज का एकत्रीकरण करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो किसान मित्रों, आपके पास भी अगर कोई किसान उत्पादन संगठन है तो आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप भी 10-20 किसान मिलकर के किसान उत्पादन संगठन बना सकते हैं और फिर इसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं आपको, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, बलराम बैसला द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना

0: सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

साथियों, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने ये दान तो सपने में ही दे दिया था और सारा हाल मंत्री को बताया था। मेहरबानों,

तीन वचनों में ले लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र 60 भार का कर्ज उतारने के लिए खजाने की ओर बढ़े, कह दिया हरिश्चंद्र बाहर चले आओ, तुम्हारा खजाने पर कोई अधिकार नहीं, तुम वचनहार हो चुके। मेरे मेहरबानों, वचनहार नहीं हो सकते थे हरिश्चंद्र, बाहर निकल गए। और आज हरिश्चंद्र तारावती पुत्र रोहतास तीनों प्राणी नमस्कार करते हुए जन्मभूमि को और माफी मांगते हुए अवधपुरी की जनता से भला कैसे चल रहे हैं, सुनिए।

चले छोड़ राज घर बार।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो। लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: जी हाँ, मैं यानी मीनाक्षी आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था जो कि नई दिल्ली में स्थित है उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना व उन्हें सशक्त करना ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। महिलाओं में गैर बराबरी की स्थिति का वर्णन करती आज की कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
3: स्त्री हूँ मैं, मुझे देवी मत बनाओ, झूठी शान की बलि वेदी पर मुझे मत चढ़ाओ। सशक्त हूँ मैं, मुझे अबला मत बनाओ, हर महीने रक्तिम होना नियति है मेरी। अंधविश्वासों की जंजीरों में ना मुझे उलझाओ, उड़ना है मुझे भी उन्मुक्त गगन में। भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ। चाहती हूँ मात्र तुमसे समर्पण मन का, देह गान की गाथा में मुझको मत उलझाओ, मुझको मत उलझाओ। औरतें घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अपनों के द्वारा घर पर ही की जाने वाली घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। जरूरी नहीं शारीरिक चोट ही हिंसा है, बल्कि किसी भी औरत को अपशब्द बोलना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा है। कहते हैं शब्दों की मार तो शारीरिक मार से भी ज्यादा गहरी होती है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, परंतु मन पर लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लग जाता है।
4: दुनिया भर में लैंगिक असमानता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे समाज की संरचना की वजह से ये लैंगिक भेदभाव ज्यादा फैलता है, परंतु बेटे की चाह में औरत को दिया जाने वाला मानसिक दबाव और प्रताड़ना सच में हमारे सभ्य समाज का एक शर्मनाक पहलू है। आइए आपको ले चलते हैं बिमला जी के घर, जहां उनकी बहू नेहा गर्भवती है

0: नेहा, अरे ओ नेहा, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नेहा,
1: क्या हुआ मम्मी जी?
0: कहाँ थी तुम?
1: मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
0: बस पूरा दिन आराम आराम आराम, जीना हराम करके रख दिया है हमारा।
1: लेकिन मम्मी जी, आराम नहीं करूंगी तो बच्ची को दिक्कत होगी।
0: क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो तब होगी ना जब लड़की होगी। चल डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास किस लिए?
0: नेहा, मैंने कल भी बताया था कि जांच के लिए जाना है।
1: लेकिन मम्मी जी, जांच के लिए तो मैं कल ही गई थी ना।
0: मैं उस जांच की बात नहीं कर रही हूँ, लिंग जांच करवाना है।
1: ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप?
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधा सीधा डॉक्टर के पास चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा आपके बेटे का अंश है, आप कैसे बोल सकती हैं ये सब?
0: अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं। सीधी तरह चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ।
0: सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी।
0: देखो नेहा, मैंने पास के मोहल्ले वाले डॉक्टर से बात कर रखी है। लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो यही किस्सा खत्म कर दूंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मात्र लिंग की वजह से आप उसे मुझसे अलग कर देंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: चलो नेहा।
1: नहीं मम्मी जी।
0: चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
0: तुम सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी।
0: चलो नेहा।
1: छोड़ो मुझे।
0: अरे सीधी तरह चलती हो कि नहीं, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
2: अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नेहा गर्भवती है, उसको या बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं माँ? किस तरह से आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इस हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है, कोई सही बात है? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो?
0: तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं?
2: अरे माँ, करना क्या है, तुम परेशान किस लिए हो ये तो बताओ।
0: तो तुम क्या चाहते हो, इस बार भी इसको बेटी पैदा करने दूँ?
2: अरे माँ फिर क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रही हो?
0: भड़कू नहीं तो और क्या करूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पहले भी दो लड़कियां पैदा कर चुकी है?
2: तो माँ इसमें इसका क्या कसूर है, आप ही बताओ, ये कोई इसके हाथ में थोड़ी ना है।
0: तो किसका कसूर है, मेरा? सच कहती हूँ बेटा, अगर इसने इस बार भी बेटी पैदा की ना, तो सीधा के सीधा मायके भेज दूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
2: अरे माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किस लिए इतना भड़क रही हो? शांत होके बैठ तो जाओ माँ, लो बैठो कुर्सी में।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा?
2: देखो माँ, पहली बात तो ये कि बेटा होगा या बेटी, अभी से ये बहस क्यों कर रहे हो? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो कि बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, आखिर क्यों माँ?
0: तो बहस नहीं करूँ और क्या करूँ, तुम ही बताओ।

0: माँ सुनो ना, जो भी होगा उसको हम प्यार से अपनाएंगे ना, किस लिए इतना परेशान होना माँ, क्यों आखिर?
1: अरुण, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ।
2: नेहा तुम चुप करो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना।
0: अरे माँ क्यों भड़क रही हो नेहा पर तुम? नेहा तुम चलो आराम करो और तुम कोई भी टेंशन मत लेना। सुनो माँ की बात का ना बुरा नहीं मानते, तुम इस अवस्था में अगर टेंशन लोगी तो बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलो आराम से तुम अपने रूम में सो जाओ।
1: लेकिन अरुण माँ तो अभी भी नहीं मान रही है।
0: अरे नेहा तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ माँ को, वो समझ जाएंगी। माँ माँ, अरे ओ माँ,
2: क्या है बोलो।
0: माँ सुनो तो सही।
2: क्या सुनो, अब सुनने को रह क्या गया है?
0: माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
2: देखो बेटा, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ। बेटा होगा तो वंश तभी तो आगे बढ़ पाएगा।
0: माँ सुनो ना, तुम भी कितनी भोली हो। देखो माँ, बेटा हो या बेटी, ये दोष औरत को क्यों देते हैं हम? औरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है। पता है माँ तुम्हें, सबसे बड़ी भूल है हम सबकी ये कि अगर बेटी हुई है तो ये औरत का दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं होता माँ।
2: तो फिर किसका दोष होता है, तुम ही बता दो।
0: माँ बेटा या बेटी पैदा करने का समर्थ केवल और केवल पुरुष के पास होता है।
2: ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो?
0: अरे मेरी भोली माँ, सही कह रहा हूँ।
2: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी?
0: अरे माँ सुनो, पुरुष के पास एक्स के साथ वाई क्रोमोजोन होते हैं, औरत के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोजोन होते हैं। पुरुष का एक्स और औरत का एक्स मिलकर बेटी को जन्म देते हैं और पुरुष का वाई और औरत का एक्स मिलकर जो है ना माँ, वो बेटे के जन्म को मिलकर निर्धारण करते हैं। माँ तुम्हें पता है ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग जो है वो अनजान है। बहुत से लोग इस वैज्ञानिक सच्चाई को नहीं जानते हैं माँ, और मेरी भोली माँ तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी ये वैज्ञानिक सच्चाई नहीं जानती हो, इसलिए तुम इस तरह से नेहा के साथ बिहेव कर रही हो, इस तरह से उसको डरा रही हो, उसको धमका रही हो। माँ अब मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ गई होंगी। माँ क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या तुम समझ गई हो?
2: अरे बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो?
3: नमस्ते माता जी, और कैसी हैं आप?
2: नमस्ते नमस्ते, ठीक ही हूँ।
3: क्या हुआ माता जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप?
2: ये बात जाके अपनी बहन से पूछो।
3: माता जी आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या घर पे?
2: होने को क्या है, तुम बहनों का वश चले तो तुम लोग मुझे जहर दे के मार डालो।
3: अरे माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए नेहा कहाँ है?
2: कमरे में होगी, खुद जाके देख लो।
0: अरे माँ तुम सुबह से गुस्सा होके बैठी हो, अभी तक देखो आपने मुंह फुला के रखा हुआ है, ऐसी भी क्या बात होगी है माँ? अब क्यों गुस्सा हो, अब तो अपना गुस्सा ठंडा करो, अब तो अपने गुस्से को कम से कम आप शांत करो।
2: शांत क्या, खाक होना है, पहले एक थी अब दूसरी भी आ गई, अब दोनों कर रही होंगी चुगलियाँ मेरी।
0: अरे माँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
2: इसमें सोचना क्या, ऐसा ही है।
0: ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ही बुलाया था और वो उसकी देखभाल करेगी ना माँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो?
2: हमने कोई कमी रखी है देखभाल में?
0: माँ मैं कब कह रहा हूँ कि हमने कमी रखी है, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैंने ही बुलाया था आशा को।
2: बड़ा ही अच्छा किया तुमने उसको बुलाकर,

0: अरे नेहा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है?
1: दीदी।
0: अरे नेहा, ये चल क्या रहा है? यहाँ तुम रो रही हो, बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही है, बात क्या है?
1: क्या बताऊं दीदी, पिछले 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं। लिंग जांच करा। आप ही बताओ, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? लड़का होगा या लड़की, है तो हमारा ही अंश ना।
0: अरे ये क्या चल रहा है इस घर में नेहा? अरे लड़का हो या लड़की, इस बात पे इस घर में इतनी परेशानी? और जीजा जी का क्या कहना है इस बारे में?
1: वो तो पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है लड़का हो या लड़की। लेकिन मम्मी जी ने मेरा हाल बुरा कर दिया है, मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, बैठने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से।
0: अरे तो अरुण ने उन्हें समझाया नहीं क्या?
1: वो समझा चुके हैं पहले से, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। आप तो जानते ही हो, ये बुजुर्ग लोग किसी की बात सुनते कहाँ हैं।
0: अच्छा नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। एक बार तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। अरे लिंग जांच अपने आप में अपराध है, हम ये अपराध तो नहीं होने दे सकते ना?
1: हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो इस बच्चे के लिए तैयार भी नहीं थी, इनके कहने से मैंने ये देखा है। लेकिन अब लिंग जांच की बात, ये कहाँ तक सही है?
0: अरे नेहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास से बात करते हैं, क्योंकि बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है।
2: लो आ गई अब दोनों।
0: अरे माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है?
2: क्यों, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया?
0: उसने तो बता दिया है, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं?
2: देखो आशा, मैंने इनको भी पहले बता के रखा है और तुम्हें भी बता रही थी कि मुझे इस बार लड़का ही चाहिए।
0: तो माँ जी, अगर आपको लड़का चाहिए, इसमें मेरी बहन क्या कर सकती है?
2: बस बस, अब तुम भी मुझे समझाना बंद करो।
0: देखिए माँ जी, ये मैं नेहा से सुन चुकी हूँ कि आप लिंग जांच करवाना चाहती हैं उसकी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ, आप खुशी से कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जेल जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए आप।
2: अरे अरे जेल?
0: जी हाँ जेल, और सिर्फ आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके बेटा भी जाएंगे, और वहाँ पर बैठ के आप दोनों चक्की पीसने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा।
2: अरे अब ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो अब जेल जाना पड़े?
0: अपराध तो आप कर रही हैं, लिंग जांच करवाना बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन अगर आप लिंग जांच करवाएंगी तो जेल जाना तो पक्का है।
2: अरुण देख बेटा, ये आशा कह कह रही है।
3: अरे माँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आशा की बात मान लेते हैं, नहीं तो हम दोनों को जेल में जाकर चक्की पीसने पड़ेगी।
0: जी हाँ माँ जी, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आपने लिंग जांच करवाई तो अब रिपोर्ट मैं करूँगी।
3: अरे माँ सोच लो, जेल जाना है या लिंग जांच करवाना है?
2: अरे नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस माफ करो तुम।
0: ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेहा, अब तुम्हारे बेबी शावर की तैयारियां करें।
4: हाँ हाँ जरूर।

0: यहाँ तो सब ठीक हो गया, परंतु हर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। ज्यादातर घरों में लड़की पैदा हुई है ये सुनकर ही सांप सूंघ जाता है। आज के बदलते युग में लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है, परंतु समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बेटी होने के लिए औरत को प्रताड़ित भी किया जाता है, जबकि इसका सीधा सीधा संबंध पुरुष से होता है। आमतौर पर भारतीय परिवारों में बेटा होने पर जो जश्न मनाया जाता है या बेटी होने पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम तो कहते हैं भाई, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार के जरूरी अंग है। बस बच्चा स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। दोनों के ही बिना परिवार अधूरा है। दोनों की किलकारियां एक सी हैं। प्यार दोनों के ही साथ एक सा है, फिर दिलों में सिर्फ बेटे की चाह क्यों, बेटी की चाहत क्यों नहीं, है ना? सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें एक बच्ची की फरियाद दर्शाई गई है। आइए सुनाती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बात जाने चल रही है कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। रात के अंधेरे में भी चल सकूंगी जब मैं बेखौफ, सम्मानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जब।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

दुनिया भर छा जाने का स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: रेडियो स्टेशन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: आप सबका स्वागत है और श्रोताओं, आज रेडियो के लिए लेकर आया है विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम एक परियोजना के तहत चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये कार्यक्रम है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना, उन्हें सशक्त करना ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ श्रोताओं, आज के अंक की अगर हम बात करें तो इस अंक में हम आपके लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आ रहे हैं जो कि अपने परिवार के विषय में ही सोचती हैं, जो करती हैं अपने परिवार के लिए ही करती हैं, अपने प्रेम भाव से सबका ध्यान रखती हैं। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा कम आंका जाता है और ये सोचा जाता है कि घर का काम करना और घर वालों का ख्याल रखना महिला का ही काम है। इस काम के लिए महिला का धन्यवाद करना या उनका सम्मान करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। तो इसी मानसिकता पर आघात करती आज की ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

0: मैं पहले तो सब काम सही से ही करती थी, पर अब तो जैसे हर बात पर मुझे कितना कुछ कहा जाता है, जैसे मुझे कुछ सुनना और समझना ही नहीं आता हो। सब तो गलत नहीं हो सकते, पर
1: दीपा, दीपा, एक बार में सुनाई नहीं देता, तब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। कब तक एक ही काम को लेकर बैठी रहेगी? जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ, तुझे आज सोहन के साथ धर्मशाला शहर भी जाना है, उसको कुछ जरूरी सामान लाना है वहाँ से। जल्दी चला हाथ, घर से कुछ सीखकर नहीं आई है?
0: पर माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अगर मेरा जाना इतना जरूरी ना हो तो क्या मैं घर पर रह लूं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे रोज रोज के बहानों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ, चुपचाप उसके साथ बाजार जा। अरे बेटा सोहन, हाँ कितनी देर में निकलेगा? सब तैयार है तेरा, जल्दी आ जा।
2: हाँ माँ, बस का समय 2 घंटे बाद का है, तो बस 1 या 1.5 घंटे में निकलते हैं यहाँ से। काफी थक गया हूँ कल से, तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
1: ठीक है मेरे लाल, तू आराम कर, फिर तब तक मैं इसको किसी और काम पर लगा देती हूँ, ताकि दुकान के लिए औजार तैयार रहे। वैसे भी ये तो पूरे दिन बहाने ढूंढती रहती है काम ना करने के लिए।
0: लेकिन माँ जी, मैंने पहले से ही औजारों पर काम कर लिया है और वो तैयार भी है।
2: अरे तूने बिना पूछे उन पर काम कर दिया? कितनी बार बोला है जब तक नहीं बताया जाए काम नहीं करना। हम बताएंगे कब करना है, कैसे करना है, उसके बाद ही तुम कोई काम करोगी। समझ नहीं आता तुम्हें?
0: ठीक है, मुझे अभी बता दीजिए कुछ काम करना है या कुछ सुधार करना है तो मैं अभी करके देती हूँ।
2: हाँ सब अभी बता दूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो ना करूँ, है ना?
0: मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया।
2: बुद्धि होगी तो ध्यान दोगी ना? बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे पास तो कहाँ से लाओगी ध्यान, बेवकूफ कहीं की।
1: दीपा, ओ रे दीपा, जल्दी से आ, और हाँ एक बाल्टी भर के जल्दी से आना, और साथ में लोटा भी साथ में ले आना, समझी?
2: और भोजन में क्या है? मुझे भोजन करके निकलना है, इसलिए खाना तैयार रखना थोड़ी देर में, समझ रही हो?
0: ठीक है जी, मैं खाना बांध भी लेती हूँ, रास्ते में भूख लगेगी तो काम आएगा।
1: ए भगवान, कैसी बहू लेकर आए हैं, तुझे बस हर वक्त घूमने की पड़ी है, हर वक्त दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। दुकान का जरूरी सामान लेकर आना है, फटाफट बस से सीधा घर पे आना।
0: ठीक है माँ जी, मैंने सामान की सूची भी रख ली है झोले में।
2: सूची के साथ साथ पैसे भी रखे हैं नहीं झोली में?
0: जी, जो औजारों को बेचकर पैसे मिले थे वो तो मैंने आपको ही दे दिए थे।
2: और जो तेरे घर वालों ने दिए थे उसका क्या?
0: वो तो मैंने अपने पास ही रखे हैं।
2: क्यों, वो क्यों रखे अपने पास?
0: जी मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना था, इसलिए जो मेरे पिताजी ने दिए थे वो रुपए मैंने अपने पास रख लिए।
2: क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है पैसे रखने की? आज के बाद इतनी जरूरत मत करना इस घर में ये करने की, मुझे दे सारे रुपए।
1: अरे बेटा सोहन, बेटा मुझे भी दे दे थोड़े पैसे, घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाना है। वैसे भी काफी दिन से मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, इसी बहाने बाजार का एक चक्कर भी लगाऊंगी।
0: लेकिन मुझे भी अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें खरीदनी थी, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए।
1: है री, तू तो बड़ी स्वार्थी है, तुझे तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, किसी और के बारे में कभी सोचा है?
0: मैं, माँ जी, मैं स्वार्थी हूँ? मैं स्वार्थी तो नहीं हूँ, आप ही बताओ, क्या माँ जी ने ठीक कहा? क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या आपको भी लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ?
2: मुझे तो तू नलायक लगती है, और ये सब बातें मुझसे मत पूछा कर, ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और दिखाना।
0: तो किससे करूं, पत्नी हूं मैं आपकी, इसीलिए मेरा मेरे हितों का, मेरी जरूरतों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है।
2: तेरी जरूरतें तो मैं आज घर आके देखता हूँ, मुंह बंद कर अपना इसी वक्त।
0: आपको लगता है ऐसे बात करने से कुछ हल होगा, या फिर मुझे ना बोलने देने से? मैं अपनी बात समझाना चाहती हूँ कि
2: परेशानी तुझे है तो तू ढूंढ हल, मेरे हिसाब से सब ठीक है।
0: क्या है आपका हिसाब?
2: मुझसे दूर हो और वापस मत आना मेरे साथ।
0: सोहन, आपका तरीका क्यों बिगड़ता जा रहा है? जैसे जान के ही आप मुझे समझना ही नहीं चाहते हो।
2: हट मेरे आगे से, सारे हॉस्टल यहीं बिखेर दूंगा।
0: ओह, क्या हो रहा है ये सब?
2: अब रुक क्यों गई?
0: थोड़ा धीरे चलो।
2: भाग, बस आ रही है वहाँ पर। अरे भाग ना।
0: सोहन रुको, बस को रोको, मुझे भी साथ ले चलो।
2: ये देखो, तब चलने नहीं दे रही थी, अब भाग नहीं रही है। कहाँ रह गई थी, भाग ना अब।
0: सोहन, सोहन, सोहन, रुको। लगता है अच्छा ही हुआ कि ये बस छूट गई। ये कहाँ ले जाती मुझे जीवन की राह पर? अपने लिए खड़ा होना बहुत ही जरूरी है, वरना जीवन बंद जाता है और आत्मा भी बन जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बंधी नहीं हूँ।

0: इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है हिंसा कोनो, और आज के इस कार्यक्रम में जो कहानी अभी आपने सुनी उस कहानी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। कुछ जवाब ढूंढने का हम जरूर प्रयास करेंगे कि इस तरह की जब पारिवारिक चीजें होती हैं तो उनका हमारी मानसिकता पर हम पर क्या असर पड़ता है। तो रजनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने ये कहानी सुनी, पर इस कहानी में जब हम देखते हैं कि महिला और पुरुष में कितना बड़ा अंतर है कि पुरुष अगर वो थका है तो वो आराम कर सकता है, लेकिन महिला को वो अधिकार नहीं है, तो ये जो हमारे समाज का विचार है, सोच है, ये किस तरह से हम पर इसका असर पड़ता है, किस तरह से ये हमें इफेक्ट करता है?
1: देखिए मीनाक्षी, जैसा कि पहले आपने कहा कि हम एक दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी दो तरह की शख्सियत है। घर के अंदर हम कुछ रवैया अपनाते हैं और घर के बाहर हमारा रवैया बदल जाता है। देखिए, जब एक बेटी की शादी होती है तो माँ बाप की इच्छाएं उम्मीदें ये होती है कि हमारी बेटी को हर तरह की सुख सुविधा मिले
0: जी।
1: लेकिन जब एक बहू को हम अपने घर लेके आते हैं तो उसके लिए हम इस तरह की सोच नहीं अपनाते हैं। तब हमारी एक दोहरी मानसिकता शुरू हो जाती है। तब हम उस बहू के साथ आए दिन कई तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि इस नाटक में दिखाया गया कि बेटा थक के आ रहा है तो उसको आराम करने दिया जा रहा है, बहू की जब तबीयत खराब है तो फिर भी उसको बोला जा रहा है कि आप काम करो, और ये भी ताने मारे जा रहे हैं कि आप काम करो और आपको कुछ नहीं आता है और आपने अपने मायके में क्या सीख के आई हूँ। तो ये अक्सर बहुत से घरों में औरतों को ये सुनने को मिलता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है। देखिए, पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है। जो भी हम सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ से सीखते हैं। अगर आप एक अच्छा घर चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, तो देखिए, अगर आपकी बहू को दो चीज़ें नहीं आती तो आप सिखा दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि लड़का घर नहीं छोड़ता, लड़की घर छोड़ के आती है। लड़की जब 21, 22, 25 साल की होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। एक डेढ़ साल तो उसको उस परिवार में एडजस्ट करने के लिए लगता है। और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो आजकल पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी जानती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जहां पे उनको घर के काम करने का मौके नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई की ओर उस परिवार को लेके जाने के बजाय क्यों ना हम उस लड़की को सिखाएं कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। अगर हम इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में कला कलेश का माहौल हो सकता है और किसी भी लड़की के साथ हिंसा हो सकती है। तो मुझे लगता है हमें जरूरत है हमें अपने रवैये को बदलने की और ये दोहरी मानसिकता को बदलने की। जब तक ये मानसिकता हमारी दोहरी रहेगी हम किसी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल रजनी जी, जो भी आपने अपने विचार रखे उनके आधार पर जरूर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत आवश्यकता है महिला और पुरुष दोनों को ये समझने की कि दोनों के समान अधिकार हैं, और अगर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो कभी भी ये रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद है श्रोताओं की आज की इस कहानी से हम सब ने कुछ न कुछ सीखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि कहीं न कहीं महिलाओं के जीवन से जुड़ा ये बहुत बड़ा सत्य है जिस पर विचार करना या बदलने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है, और ये तभी संभव है जब हम सब अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी और इससे हमने जरूर अपनी मानसिकता को बदलने का एक नजरिया भी देखा होगा। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े अपने कोई भी विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारा दूरभाष नंबर है 7018117091। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक आप यूं ही बने रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
3: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
2: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: हाँ माँ जी।
5: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
6: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: धरती मेरी धरती,

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी, मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मानसून में बारिश भी नहीं होती। हर मानसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी, मौसम मौसम लवली मौसम।

0: अरे सृष्टि, ओ सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर ना, पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा,
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई, किसके लिए आज मौसम लवली लवली है। अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। तो अब चाय।
0: हाँ।
1: ओ, तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं।
2: अरे भाई, मौसम ही ऐसा है बेटा।
1: लवली लवली।
3: मानव, आज तो मानव बड़ा खुश है। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, बस मूड नहीं बन रहा था। और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है, तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
0: आपकी चाय।
2: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
0: हाय आप।
2: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा, कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
2: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला।
0: पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
1: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
2: क्यों बती रहे हो भाई। वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो। जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
3: वो कैसे?
2: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
0: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया, तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा। उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तो वहाँ वर्षा हो रही थी।
2: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
3: अच्छा।
2: पर हुमायूं वहीं डेरा जमाए रहा, और तब शेरशाह अपनी मान से निकला और उसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। अरे सब जानते हैं कि वो गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई।
1: पापा, मैंने सुना है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से 2,500 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
2: हाँ बेटा।
1: कुछ विशेषज्ञों का विचार है, उस रात अगर वर्षा होती या तेज हवाएं चलती तो जहरीली गैस या तो पानी में घुल जाती या हवा उसे दूर ले जाती, जिससे उसके प्रभाव अधिक क्षेत्र पर तो होते परंतु इतने घातक नहीं होते।
2: बिल्कुल।
1: ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा।
2: हाँ मानव, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
3: अच्छा।
2: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4,000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
1: पापा, आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
0: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
2: एक मिनट, पहले पूछ तो लो मुझसे।
1: बोलो ना पापा।
2: तो चलो ना भाई।
4: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
2: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भाई, तुमने सब कुछ कमाल कर दिया भैया।
1: नमस्ते।
4: नमस्ते बच्चों। नमस्ते
2: बच्चों। ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
4: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों, देखो यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
2: बड़ी सुंदर है।
4: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
3: मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
2: और ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए हो।
5: वो तो मैंने हजम कर दिए
2: रास्ते में।
1: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यहीं फेंक दी।
0: मानव कब अपने आप को बदलोगे?
5: मम्मी
0: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
4: अरे भाभी जी मानव को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा वहाँ सामने दो कूड़ेदान रखे हैं।
3: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा। जा
6: मानव मैं आ गया।
7: अरे मानव आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
5: अरे गौरव तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
7: हाँ विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
5: गौरव देखो ये मानव अपनी आदतें बदलता ही नहीं है।
7: सृष्टि दीदी मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
3: कभी कभी
7: पर मानव मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
3: गौरव कुछ भी कहो पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
7: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
5: सच गौरव पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
4: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
5: नाश्ता?
4: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
2: वैसे अनुराग यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। हो कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
4: हाँ भाई हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
3: डॉक्टर अंकल मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
4: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
2: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
4: हाँ भाई मैं भी एक शौकिया मौसम वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
5: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
4: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
5: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
0: बस बस बस मानव करने लगा परेशान तू अपने अंकल को।
4: अरे नहीं नहीं भाभी मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
1: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
3: हाँ सृष्टि बिल्कुल ठीक होगा। मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में 3 मुख्य कारक हैं।
5: कौन कौन से?
4: सूर्य, हवा और पानी।
5: अंकल कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
4: लवली लवली यानी?
5: देखो अंकल आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों हुआ ना मौसम लवली लवली?
2: बेटा बेटा कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता, ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाया साथ में
5: पापा।
7: हाँ अंकल तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है तितली के अर्जेंटीना में पंख फड़फड़ाने से ध्रुवों पर हिमखंड गिरने लगते हैं।
4: बेटे इस उदाहरण से वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम के निर्धारण की प्रक्रिया कितनी जटिल है, एक छोटी सी घटना कालांतर में किस तरह मौसम को बड़े रूप में प्रभावित करेगी कहा नहीं जा सकता।
3: यानी अभी मौसम के बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए।
4: कुछ ऐसा ही समझो।
5: पर अंकल पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। मौसम बनता और बिगड़ता कैसे है?
4: अरे बेटे, पृथ्वी पर मौसम परिणाम है तापमानों के अंतर का।
5: तापमान में अंतर?
4: हाँ बच्चों, और तापमान में अंतर इस बात पर निर्भर है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को सूर्य से प्रति यूनिट कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है।
1: तब तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
4: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
3: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं।
4: हाँ।
3: पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
1: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
5: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
4: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है समुद्रों में नहीं।
2: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
5: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली।
1: अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
4: सूर्य प्रकाश
3: बहुत बढ़िया मानो, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
4: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
3: अच्छा,
7: तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेड विंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
4: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
5: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
2: अच्छा जाओ बच्चा, जाओ अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ जाओ, वो तैयारी कराओ, जाओ जाओ।
4: सचमुच मजा आ गया खाने का,
5: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
4: क्यों?
7: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
4: भाई ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
5: कौन कौन सी अंकल?
4: भाई ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
7: कहीं आप ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे?
4: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
5: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
4: हाँ।
5: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
3: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
7: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
4: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
5: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
4: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है और मौसम नम बना रहता है।
7: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
1: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है,
4: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं, और ये पवन यानी की हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवने और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना?
7: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
4: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी के अनुसार मौसम ठंडा गर्म शुष्क या नम होगा।
2: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछुआ।
0: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं।
1: तब तो अंकल हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहाँ के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
4: बिल्कुल,
5: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
3: अरे भाई मानव, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
1: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
4: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहाँ उच्च दाब है वहाँ से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
2: परंतु ऐसा होता नहीं है।
1: क्यों?
2: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस

0: ही अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
1: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
0: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
1: बिल्कुल ठीक है। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
2: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
0: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
3: नहीं बेटा नहीं, भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं। और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
1: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
0: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
2: व्यापार न सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
0: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं खाने में तेज है।
4: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई
2: है। अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
5: अंकल, सेब तो हम भी खाएंगे।
2: अच्छा बच्चो, तुम सब सेब लो, ये लो, ये लो।
5: मैं बच गया भाई।
0: अंकल, मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम 50-40 सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
1: सृष्टि, मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती 40, भयानक 50 और चीखते 60 तो नहीं पढ़े थे?
0: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
4: लेकिन भैया, ये कैसे विचित्र नाम है?
1: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है तो इसे गरजती 40 या रोरिंग 40 कहते हैं।
6: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
1: पापा आप ही बता दो।
3: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है तो इसे भयानक 50, फ्यूरियस 50, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते 60, स्क्रीमिंग 60 कहा जाता है।
0: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
4: अगर आपने जल और थल समीर को अस्थाई पवन बताया था ना?
2: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्माधारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
6: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है
0: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
2: हाँ बेटी, ऐसा ही होता है।
4: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
2: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती है।
7: आरोही और अवरोही हवाएं?
1: हाँ
4: विवेक भैया, कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
1: मानव, तू फिर से घबराने लगा।
4: बताओ ना भैया।
1: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय पवन है।
2: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है। इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
0: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
3: और रात में पर्वत की चोटियां घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।
2: बच्चा।
0: अंकल, अब बाहर जाकर पिकनिक का मजा भी लिया जाए।
2: हाँ,
4: और बाहर जाकर देखें कि कौन सी हवा चल रही है।
2: हाँ बच्चों, अरे हम तो बताना ही भूल गए बातों बातों में कि बाहर हमने टेंट लगा रखा है।
6: अरे मानव, चल बाहर चलकर लवली लवली मौसम का आनंद लेते
2: हैं। चलो चलो चलो चलो।
8: क्यों डॉक्टर साहब, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया?
4: मम्मी, हमने कोई शरारत नहीं की है।
2: भाई, बच्चों की मौसम संबंधी जिज्ञासा देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया।
0: मम्मी, हम तो लवली लवली मौसम में बाहर बातें करने आए हैं।

0: अच्छा अच्छा बैठो बच्चों, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी लवली लवली बातें।
1: अरे मानव ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है।
2: अरे हाँ, मानव चाहे एरोप्लेन में बैठा ना हो लेकिन उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है।
0: अच्छा,
3: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या जेट विमान भी उड़ाए।
2: अंकल, जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
4: बच्चों, धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
2: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
5: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में ही होती है।
6: हाँ, लेकिन बेटा ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
3: अच्छा, तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मॉनसून का संकेत माना जाता है।
6: बिल्कुल ठीक, मॉनसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
5: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मॉनसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
6: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मॉनसून प्रभावित होता है।
2: लेकिन ये मॉनसून समय का पक्का नहीं है।
6: हा?
2: कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
3: अरे मानव, मॉनसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
2: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं, तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। परीक्षाएं? भाई मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अरे मानव, ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर, बिस्किट है क्या?
7: अरे दीदी, बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है, ताकि बाहर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
6: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
4: भाई ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
6: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
4: भाई कुछ भी कहो, पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
8: हाँ, आज की पिकनिक बड़ी मजेदार रही।
0: भाई साहब, आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षा प्रद बनाया है।
2: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Chori chori dekhe jaye piya, goriya nrit.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना, प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
2: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहां की अमर रह गई और वो है इनकी।
3: ये तो तुम जैसा।
4: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
3: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
4: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना? अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

0: एक बात बताओ, क्या हम सच्ची में सोलमेट्स हैं?
1: हम्म।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी, म्यूजिक लावेटर मेहरबा, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: mixing in the house.
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी, जानती हो ना अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावा की।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
1: केवल माँ का दूध
2: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
1: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
2: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। गच लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर, लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ पहले रहनी, हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: चीता बेगम।
1: बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय गर्मियों

0: में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें। थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आजा प्यार की होड़ी ले।
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हमारा यार सौदा सौदा
2: ओहो
1: दोनों डील कर सी
2: टाइट टाइट वेरी टाइट।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेम

0: लाइटिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग

0: फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग

दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Song credits, singers Neha Kakkar, Romy, Arun and Ika, recreated Tanishq Bagchi, lyrics Shabbir Ahmed, only on Tips Official. So let's enjoy it, only on Surushada 90.8 FM.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
6: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts. Anyways.

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
6: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
5: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
6: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
5: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
7: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर RK शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समय, यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक,

0: में थोड़ा सा जो है कम काम कर रहे हैं, रेस्ट
1: और
0: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, फेरी में जो है सब ज्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
0: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
0: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है कहीं भी किसी तरह की जगह उनको वहाँ पे अपना।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं इस मौसम में?
0: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं। तो बचाव करें, बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती है,
0: हीट स्ट्रोक
1: हो जाता है,
0: बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण है?
0: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
0: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
0: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी। तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
0: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
0: एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
0: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
0: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
0: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पर इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे।
2: और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
3: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जाँच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे है ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना? सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।